0: कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बड़ी बेहतरी आई है और इनसे मुलाकात एजाज की बात है। वो मेरी दोस्त हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानने लगे हैं और वो एक अजीम वजीर आजम बनेंगी। ताकाची ने जवाब दिया कि वो दुनिया को अपने इत्तेहाद की ताकत दिखाने के लिए इस मौके से फायदा उठाना चाहती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सेमी कंडक्टरों और कलीदी मातनियात जैसे शोबों में इक्तिसादी सलामती तआवुन आगे बढ़ रहा है। इक्तिसादी महाज के हवाले से ताकाची ने कहा कि जापान मुसलसल 7 सालों से अमरीका में सबसे बड़ा सरमायाकार रहा है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी इदा किया। ताकाची ने बैन अलावामी फौजदारी अदालत ICC का मामला भी उठाया। ट्रंप इंतजामिया ICC पर सख्त मौकफ अपना रही है। दोनों रहनुमाओं ने खुलकर तबादला ख्याल किया, जिसमें ताकाची ने कानून की हुक्मरानी पर जोर देते हुए जापान के मौकफ का खाका पेश किया।
1: ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें समाप्त फरमाइए। समुद्री तूफान दुजेन से रिकॉर्ड बारिशें होने के बायस जापान के कांतो खित्ते में मिट्टी के तोदे गिरने से अब तक 9 अफराद हलाक हो चुके हैं और 5 लापता हैं। ताकतवर तूफान बादोबारा पीर से मंगल तक जापान के करीब आया, जिससे बारिश बरसाने वाले बादल बने जो टोक्यो और उसके आसपास के प्रीफेक्चरों पर मुश्तमिल कांतो खित्ते के ऊपर घंटों मौजूद रहे। कांतो में 8 मकामात पर रिकॉर्ड बारिश हुई। दुजैन हारी तूफान से होने वाली शदीद बारिश के बायस चीबा प्रीफेक्चर के किमित्सु शहर में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की एक डीलरशिप के अहाते में कीचड़ और मलबे की बड़ी मकदार बह आई। 70 के करीब गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जिनमें से कुछ मलबे तले दब गई। एक पाकिस्तानी के जेर इंतजाम इस कंपनी के अहाते में 100 गाड़ियां और पुर्जाजात मौजूद थे। मंगल के रोज मुआयना करने पर उन्हें मालूम हुआ कि मिट्टी और मलबे का ढेर तकरीबन 1 से 2 मीटर ऊंचा है और कई गाड़ियां मलबे तले दब गई हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी के लिए तमाम मिट्टी और मलबे को खुद से हटाना मुश्किल होगा और वो हुक्काम से अफरादी कुव्वत की मदद हासिल करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल काम नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ियां दब गई हैं और वो इस बारे में फिक्रमंद हैं कि क्या नुकसान के बाद वो अपना कारोबार जारी रख सकेंगे या नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें एहसास हो गया है कि शदीद बारिश कितनी खौफनाक हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 3 मीडिया आउटलेट्स पर पाबंदी के बाद टीवी नेटवर्क्स के साथ शदीद होते तसादुम के दरमियान व्हाइट हाउस ने एक नया ट्रंप टीवी लॉन्च कर दिया है। ट्रंप ने जुमे को सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि वो CNN, MS नाउ और पॉलिटिको पर व्हाइट हाउस की कवरेज करने पर पाबंदी लगा रहे हैं। यकजहती के इजहार में अमरीका के दीगर बड़े टीवी नेटवर्क्स ने पीर तक सदर की मुश्तरका कवरेज को मुअत्तल कर दिया। नतीजतन सदर जिन तकरीबात में शरीक थे उनमें से कुछ की वीडियो या ऑडियो कवरेज नहीं हो सकी। व्हाइट हाउस ने उसी दिन ऐलान किया कि एक निजी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए 24 घंटे चलने वाला स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ट्रंप टीवी शुरू किया गया है। व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर कहा, हर बड़ा लम्हा आपके टीवी तक नहीं पहुंचा है, अब ये हो पाएगा। बादजा उसी दिन नशरियात भी शुरू हो गई। आगाज एक वीडियो के साथ हुआ जिसमें मुख्तलिफ अमरीकी एनिमे और ड्रामा मनाजिर के क्लिप्स के पस मंजर के साथ ट्रंप टीवी का टाइटल दिखाया गया। उसके बाद ट्रंप की पिछली तकरीर की वीडियो चलना शुरू हो गई।
0: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में जापानी वजीर आज़म ताकाइची सनाए ने कहा है कि जापान कानून की हुक्मरानी पर मबनी आज़ाद और खुले बैन अलावामी निज़ाम को बरकरार रखने और तरक्की देने में अपना हिस्सा डालता रहेगा। और जापानी वजीर आज़म ताकाइची सनाए और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने دفاعی اور اقتصادی سلامتی کے امور

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 23 सितंबर बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला जैन और वायला खवानो से सुने समाचार। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सनाई ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि जापान विधि सम्मत स्वतंत्र और मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने और उसके विकास में योगदान देना जारी रखेगा। ताकायची ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत यह कहते हुए की कि कानून के शासन पर आधारित स्वतंत्र और मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जिसे हमने बढ़ावा दिया है कई मोर्चों पर कठिन चुनौतियों का सामना कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में शांति और स्थिरता लाने तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नई चुनौतियों से निपटने और समृद्ध बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का महत्व आज पहले से कहीं अधिक है। उन्होंने संकल्प व्यक्त किया कि जापान इस वैश्विक संस्था के प्रति अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाना जारी रखेगा। उत्तर कोरिया के मुद्दे पर ताकायची ने रूस के साथ उसके बढ़ते सैन्य सहयोग पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों की प्रगति को सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का स्पष्ट उल्लंघन बताया। ताकायची ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से जापान एक शांति प्रिय राष्ट्र होने के नाते किसी भी विवाद के निपटारे में कानून के शासन को बहुत महत्व देता रहा है। उन्होंने कहा कि यह बात जापान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकायों को दिए गए निरंतर समर्थन और न्यायाधीशों के योगदान से स्पष्ट होती है। संयुक्त राष्ट्र सुधारों के संदर्भ में ताकायची ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर से तथाकथित शत्रु राष्ट्र शब्द को हटाने का आह्वान किया। ये शब्द द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित हुए जापान और जर्मनी जैसे देशों को शत्रु देश के रूप में इंगित करते हैं। ताकायची ने अपने भाषण का समापन करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के बाद से पिछले 70 वर्षों में जापान ने अपनी विशुद्ध रक्षा उन्मुख नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति और समृद्धि में निरंतर योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी यह नीति अपरिवर्तित रहेगी। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सनाई और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच रक्षा और आर्थिक सुरक्षा के मुद्दों पर सहयोग की पुष्टि करने के लिए एक बैठक हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर हुई। ट्रंप ने कहा कि जापान का उद्योग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत बड़ा सुधार हुआ है और ताकायची के साथ खड़े होना मेरे लिए सम्मान की बात है। वे मेरी मित्र हैं, पिछले कुछ समय में हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान गए हैं और वे एक बेहतरीन प्रधानमंत्री साबित होंगी। ताकायची ने जवाब दिया कि वे इस अवसर पर दुनिया को अपने गठबंधन की ताकत दिखाना चाहेंगी। उन्होंने आगे कहा कि एआई, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों के जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सुरक्षा सहयोग आगे बढ़ रहा है। आर्थिक मोर्चे पर ताकायची ने उल्लेख किया कि जापान लगातार 7 वर्षों से अमेरिका में सबसे बड़ा निवेशक रहा है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। ताकायची ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी का मुद्दा भी उठाया। ट्रंप प्रशासन आईसीसी पर कड़ा रुख अपना रहा है। दोनों नेताओं ने खुलकर अपने विचार रखे, जिसमें ताकायची ने कानून के शासन पर जोर देते हुए जापान की स्थिति स्पष्ट की।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। तूफान दुजेन से जापान के कांतो क्षेत्र में रिकॉर्ड मात्रा में बारिश और कई जगह भूस्खलन हुआ, जिसमें अब तक 9 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य लापता हैं। ये शक्तिशाली तूफान सोमवार से मंगलवार तक जापान की ओर बढ़ता रहा। इसके चलते बारिश के घने बादल छा गए, जो टोक्यो सहित कांतो क्षेत्र और आसपास के प्रीफेक्चरों पर कई घंटों तक बने रहे। कांतो क्षेत्र के 8 स्थानों पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई। तूफान दुजेन के कारण भारी बारिश से चीबा प्रीफेक्चर के खिमित्सु शहर में पुरानी कारों के एक शोरूम के परिसर में भारी मात्रा में कीचड़ और मलबा बहकर आ गया है। लगभग 70 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें से कुछ मलबे के नीचे दब गए। पाकिस्तानी मूल के एक व्यक्ति की इस कंपनी के परिसर में 100 वाहन और गाड़ियों के ऑटो पार्ट्स थे। जब उन्होंने मंगलवार को जांच की तो पाया कि लगभग 1 से 2 मीटर की ऊंचाई तक कीचड़ और मलबा जमा हुआ था और कई कारें मलबे के नीचे दबी हुई थीं। उन्होंने कहा कि कंपनी के लिए अकेले ही सारी मिट्टी और मलबा हटाना मुश्किल होगा और वे प्रशासन से सहायता लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गाड़ियों के कीचड़ में दब जाने के कारण उनका काम ठप्प हो गया है। उन्हें इस बात की चिंता है कि नुकसान के बाद वे अपना कारोबार जारी रख पाएंगे या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि भारी बारिश इतनी भयावह हो सकती है, इसका उन्हें एहसास हो गया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 मीडिया केंद्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद टीवी चैनलों के साथ टकराव बढ़ गया और अब व्हाइट हाउस ने एक नया ट्रंप टीवी लॉन्च किया है। ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वे CNN, MS Now और पॉलिटिको को व्हाइट हाउस की खबरें कवर करने से रोक रहे हैं। एकजुटता दिखाते हुए अमेरिका के प्रमुख टीवी नेटवर्कों ने सोमवार से राष्ट्रपति के कार्यक्रमों का संयुक्त प्रसारण नहीं होने दिया। इसके कारण राष्ट्रपति ने जिन कार्यक्रमों में भाग लिया था उनका वीडियो या ऑडियो उपलब्ध नहीं हो पाया। उसी दिन व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि उसने एक निजी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट का उपयोग करके 24 घंटे चलने वाला स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ट्रंप टीवी लॉन्च किया है। व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर कहा, हर बड़ा क्षण आपके टीवी पर नहीं दिखाया जाता, अब दिखाया जाएगा। उसी दिन बाद में प्रसारण शुरू हुआ। प्रसारण की शुरुआत एक वीडियो से हुई, जिसमें कई अमरीकी एनिमे और धारावाहिक दृश्यों की पृष्ठभूमि में ट्रंप टीवी शीर्षक था। इसके बाद ट्रंप के एक पुराने भाषण का वीडियो दिखाया गया।
1: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सनाई ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि जापान विधि सम्मत, स्वतंत्र और मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने और उसके विकास में योगदान देना जारी रखेगा। ताकायची ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। और तूफान दुजियन से जापान के कांतो क्षेत्र में रिकॉर्ड मात्रा में बारिश और कई जगह भूस्खलन हुआ, जिसमें अब तक 9 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य लापता हैं। और इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।